इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की। वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: दिल से सुनाओ रेडियो 1 भावन 90.8 FM, always had touchy।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि किसी गरीब इंसान की अचानक लॉटरी लग जाए और उसे रहने के लिए एक बहुत ऊंचा और भव्य महल मिल जाए। अब वह इंसान उस महल की ऊंची छत पर जाकर खुशी से नाचने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे और शान से सबको दिखाने लगे कि देखो मैं कितने ऊंचे स्थान पर पहुंच गया हूं। लेकिन वह यह भूल जाएगा कि वह महल उसे केवल कुछ समय के लिए ही मिला है और अगर उसने समय रहते कोई स्थायी प्रबंध नहीं किया तो यह सुख उसे कभी भी छीना जा सकता है। वह अपनी इस नासमझी में केवल अहंकार की दौड़ लगाता रहे या आलस्य की नींद सोता रहे तो आप उसे क्या कहेंगे? आज हम सब इंसानों की हालत भी कुछ ऐसी ही है। कबीर साहब आज हमें इसी अस्थाई सफलता के नशे से जगाने आए हैं ताकि हम विधाता के दिए सबसे बड़े अवसर को व्यर्थ ना कर दें। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह आंखें खोल देने वाला सूत्र। डागल उपरी दौड़ना सुख निंदड़ी न सोई, डागल उपरी दौड़ना सुख निंदड़ी न सोई, पुने पाए दोंदड़े ओछी ठोर न खोई। डागल उपरी दौड़ना सुख निंदड़ी न सोई,

0: साधो ओ चिठोर न खोय। श्रोताओं, कबीर साहब मनुष्य को सचेत करते हुए कहते हैं, डागल ऊपरी दौड़ना। यह जो तुम्हें संसार में धन पद या मान प्रतिष्ठा का डागल यानी ऊंचा महल या चबूतरा मिल गया है, उस पर चढ़कर अहंकार की दौड़ मत लगाओ। अपनी इस झूठी श्रेष्ठता पर मत इतराओ। सुख नींदड़ी न सोई और इस अस्थाई वैभव को पाकर सुख की नींद यानी निश्चिंतता और अज्ञान की बेहोशी में मत सो जाओ। यह मत समझ बैठो कि तुम हमेशा सुरक्षित हो। वह ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगली पंक्ति में कबीर इसके पीछे का गहरा कारण बताते हैं। पुने पाई द्योंदड़े, यह जो तुम्हें मानव जीवन के सुंदर और मूल्यवान द्योंदड़े यानी दिन मिले हैं, यह जो ऊंचा पद मिला है, यह तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य यानी पुण्यों की पूंजी के कारण ही संभव हुआ है। ओछी ठोर न खोई, इसलिए कबीर साहब चेतावनी देते हैं कि पुण्यों से मिले इस अनमोल आत्मिक पूंजी को, इस दुर्लभ जीवन को संसार के वासना, ईर्ष्या और सांसारिक प्रपंचों जैसे ओछी ठोर यानी तुच्छ और संकीर्ण स्थानों के चक्कर में पड़कर व्यर्थ मत गवा देना। यह दोहा प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बीच के संतुलन का महासूत्र है। भारतीय दर्शन के अनुसार यह सुंदर मानव देह और अनुकूल परिस्थितियां पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का फल होती हैं। लेकिन मनुष्य की भूल यह है कि वह इस फल को ही अपनी अंतिम मंजिल मानकर भोग विलास और अहंकार में डूब जाता है। कबीर समझा रहे हैं कि ऊंचा स्थान तुम्हें इसलिए नहीं मिला कि तुम यहाँ आकर सो जाओ, बल्कि इसलिए मिला है ताकि तुम इस ऊंचाई का उपयोग अपनी चेतना को अनंत परमात्मा से जोड़ने में कर सको। जो इंसान इस अवसर को केवल सांसारिक दिखावे में नष्ट कर देता है, वह अपनी संचित पूंजी का दिवाला निकाल देता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा शांत मन से अपनी उपलब्धियों को देखिए। समाज में जो हमारा पद है, जो हमारा मान सम्मान है, क्या हम उसी के नशे में चूर होकर अपनी आत्मा को तो नहीं भूल रहे हैं? कहीं हम भी इस डागल यानी ऊंचे चबूतरे पर चढ़कर दूसरों को छोटा दिखाने की दौड़ तो नहीं लगा रहे हैं? आज कोशिश कीजिए इस अज्ञान की नींद से जागने की। अपनी हर सफलता को परमात्मा का प्रसाद मानकर विनम्र बनिए। इन अनमोल दिनों को व्यर्थ की चिंताओं और ओछे प्रपंचों में बर्बाद करने के बजाय राम नाम के सुमिरन और करुणा के मार्ग पर लगाइए। अपनी चेतना को इस ऊंचाई से और ऊपर उठने दीजिए, ताकि यह जीवन सचमुच सार्थक हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: रेडियो मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
2: गीताई अध्याय 9 मानव सेवीची राजविद्या समर्पण योग अथवा राजविद्या राजगुह्य योग। श्री भगवान म्हणाले, आता गुपित हे थोर सांगतो निर्मला तुझ रविज्ञाने कसिले ज्ञान अशुभा तू निसोडवी राजविद्या महागुह्य उत्तमोत्तम पावन प्रत्यक्ष हे सुके लाभे धर्मसार सनातन लोकनास्तिक हा धर्म अश्रद्धेने न सेविती मृत्यूची धरती वाट संसारी मज सोडुने मीची अव्यक्त रूपाने जग हे व्यापिले असे माझ्यात राहती भूते मी न भूतांत राहतो न वा भूते हि माझ्यात माझा हा दिव्य योग की करितो धरितो भूते परित्यात नसे कुठे आकाशात महावायू सदा सर्वत्र राहतो माझ्यात सगळी भूते राहती जान तू तशी कल्पांती निजवी भूते मी माझ्या प्रकृती मध्ये कल्पारंभी पुन्हा सारी मीची जागवितो स्मये हाती प्रकृती घेवोने जागवी मी पुन्हा पुन्हा भूतांचा संग हा सारा प्रकृतीच्या अधीन जो परी ही सगळी कर्मे बांधू न शकती मज उदासीना परी राहे अनासक्त मनुनिया साक्षी मी प्रकृती द्वारा उभारी सचराचर त्यामुळे सर्व सृष्टीची ही घडामोड होतसे मज मानव रूपात तुच्छत्वे मूढ देखती नेनुनी थोरले रूप जे माझे विश्वचालक ते आशावाद मूढांचे कर्मे ज्ञाने ही ती वृथा संपत्ती जोडिली ज्यांनी आसुरी मोहकारक दैवी संपत्ती जोडोनी महात्मे भजती मज अनन्य भावे जानुनी मी विश्वारंभ शाश्वत अखंड कीर्तने माझ्या यत्नशील दृढव्रती भक्तीने मज वंदोनी भजती नित्य जोडिले दुसरे ज्ञान यज्ञाने भजती व्यापका मज ब्रह्मभावे विवेकाने अविरोधेची देखुनी मीची संकल्प मी यज्ञ स्वावलंबन अन्न मी मंत्र मी हव्यते मीची अग्नि मी मीची अर्पण मी ह्या जगास आधार माय बाप वडील मी मी तिन्ही वेद ओंकार जानन्या योग्य पावन साक्षी स्वामी सखा भर्ता निवास गती आसरा करी हरी धरी मीजी ठेवा मी बीज म्यक्षय तापतो सूर्य रूपे मी सोडितो वृष्टी खेचितो मृत्यू मी आणि मी मोक्ष असे आणि नसेहि मी वेदाभ्यासी सोमपाने पुनीत माझ्या यज्ञे इच्छिती स्वर्ग जोडू ते पुण्याने

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं वीर क्रांतिकारी गणेश दामोदर सावरकर जी को। कार्यक्रम के अंत में आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छायाचित्र। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप SMS के जरिए भी हमें जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन ले, 7771908908। सही जवाब के साथ अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस जरूर भेजें।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

अंगारों पर चलना होगा, युग में परिवर्तन लाने को, झंझावातों के आघातों में स्वच्छंद गीत गाने को। पराधीनता के उस दौर में अंगारों पर चलने वाले तमाम कठिनाइयों और खतरों के बावजूद बुलंद स्वर में स्वतंत्रता के गीत गाने वाले अनेक क्रांतिकारी हुए हैं, जिनके त्याग और बलिदान की बदौलत भारत भूमि स्वाधीन हुई। ऐसे ही महान राष्ट्रभक्त थे गणेश दामोदर सावरकर, जिन्हें हम बाबा राव सावरकर के नाम से भी जानते हैं। उनकी एक पहचान ये भी है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर उनके छोटे भाई थे और दोनों ही भाइयों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई थी। गणेश दामोदर सावरकर का जन्म 13 जून सन 1879 को नासिक के निकट भागुर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। चार भाई बहनों में गणेश सबसे बड़े थे। उनके दो छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर थे और एक छोटी बहन थी मैनाबाई। बाबा राव का बचपन भागुर गांव में ही बीता। शुरुआती शिक्षा के दौर में बाबा राव का मन औपचारिक पढ़ाई से अलग हटकर धर्मयोग और जप तप में लगने लगा। वो लगातार इन विषयों को पढ़ने लगे और इन विषयों के जानकार जब पधारते तो उनसे मिलकर ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। उधर पिता दामोदर पंत सावरकर की देखरेख में बाबा राव ने तलवार और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण भी मिल गया। पिता के सानिध्य में ही उन्होंने तप और अध्ययन का गुण पाया था और उनका मन घर छोड़कर संन्यास लेने का बनने लगा था। इसी बीच प्लेग फैलने के कारण उनके पिता का निधन हो गया। इसके 7 वर्ष पूर्व माँ का भी महामारी में देहांत हो चुका था। घर की परिस्थितियों और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण बाबा राव ने मैट्रिक तक की पढ़ाई ही की, लेकिन योग और चिकित्सा विज्ञान में गहरी रुचि होने की वजह से बाबा साहब ने स्वाध्याय किया तथा आगे चलकर उन्होंने स्वयं कई तरह की दवाइयां भी बनाई। इसके अलावा उन्होंने ज्योतिष शास्त्र तथा वेदांत का भी गहरा अध्ययन किया। संगीत में भी उनकी विशेष रुचि थी। वो न केवल अच्छा गाते थे बल्कि तबला और सितार बजाने में भी सिद्धस्थ थे। सन 1896 में गणेश दामोदर सावरकर का विवाह संपन्न हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी का नाम यशोदा रखा। उनकी 2 संतानें हुईं, लेकिन वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकी। देश के हालात उन्हें परेशान करते थे और वो आजादी के लिए क्रांति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते थे। उसी समय सन 1899 में तात्या राव और उनके दोस्तों ने राष्ट्रभक्त समूह नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। जब गणेश दामोदर सावरकर को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने उस संगठन के लिए काम करना आरंभ कर दिया। इस तरह अटल संकल्प के साथ उनका क्रांतिकारी जीवन आरंभ हो गया।

क्रांतिकारी दल किसी भी नए सदस्य की भर्ती से पहले उसकी मानसिक तत्परता और सर्वस्व बलिदान की इच्छा शक्ति को परखते थे, जिसमें गणेश दामोदर सावरकर खरे उतरे। 1 जनवरी सन 1900 को गणेश और विनायक दामोदर सावरकर ने एक संगठन खुले तौर पर शुरू किया, जिसका नाम था मित्र मेला। यही संगठन आगे चलकर अभिनव भारत सोसाइटी बना, जिसका संबंध नासिक षड्यंत्र केस से था। इस संगठन के कार्यवाहक गणेश दामोदर सावरकर ही थे। गणेश दामोदर सावरकर ने गणेश उत्सव, शिवाजी जयंती जैसे अनेक अवसरों पर सार्वजनिक भाषणों और काव्य गोष्ठियों के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया। साथ ही युवाओं के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सहित कई विभूतियों को नासिक में आमंत्रित किया। इसके साथ ही गणेश दामोदर सावरकर ने संगठन के लिए पैसा जुटाने का काम अपने हाथ में ले लिया था, ताकि उससे बंदूकें, पर्चे आदि खरीदे जा सके और देश की आजादी की अलग जगी रहे। इसी बीच उनके छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर, जो कि वीर सावरकर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, वकालत की डिग्री हासिल करने के लिए लंदन चले गए। लंदन में वकालत के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उन्हें छात्रवृत्ति दी, जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जो इंग्लैंड जाकर पढ़ने वाले छात्रों के परस्पर मिलन एवं विविध विचार विमर्श का एक प्रमुख केंद्र था। लंदन में श्यामजी से मिलकर वीर सावरकर ने इस क्रांति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार कर विदेशों से भी मदद ली। छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर कविताएं, भाषण और लेख आदि लिखकर समुद्र के रास्ते भारत भेजा करते थे और गणेश दामोदर सावरकर इन्हें संपादित करके प्रकाशित करवाते थे। ये काम तलवार की धार पर चलने जैसा था, लेकिन गणेश सावरकर इस कार्य में निरंतर संलग्न रहे। गणेश दामोदर सावरकर स्वयं भी एक उम्दा लेखक थे। उनके लेखन में देश प्रेम और शोध साफ देखा जा सकता था। बहुत शोध के बाद उन्होंने अंग्रेजी में एक किताब लिखी, इंडिया एज अ नेशन। ये किताब जब्त ना हो जाए और आंदोलन ठप ना हो जाए, इस विचार से उन्होंने दुर्गानंद के छदम नाम से ये किताब लिखी थी। हालांकि इस बात की भनक अंग्रेजी हुकूमत को बहुत जल्द लग गई, किताब बैन कर दी गई, रातों रात सारी प्रतियां दुकानों से उठा ली गईं और गणेश दामोदर सावरकर की खोजबीन का काम शुरू हो गया। उधर लंदन में रहते हुए वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति पर अपनी किताब 1857 का स्वतंत्र समर लिख चुके थे। इस तरह दोनों भाइयों पर अंग्रेजों की कड़ी नजर थी, लेकिन आजादी के इन दीवानों की नजर तो भारत देश की दुर्दशा पर थी, इसीलिए वो क्रांति पथ पर निर्भय आगे बढ़ते रहे।

सन 1909 में नासिक के कलेक्टर एएमटी जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कान्हारे नामक क्रांतिकारी ने मौत के घाट उतार दिया। नासिक षड्यंत्र कांड ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। देश भर में इस कांड की चर्चा हुई। पुलिस ने छानबीन शुरू की। मालूम हुआ कि अनंत लक्ष्मण कान्हारे का अभिनव भारत सोसाइटी से संबंध है। क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हुई। अनंत लक्ष्मण कान्हारे के साथ कृष्णजी गोपाल कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे सहित 34 से अधिक लोग पकड़े गए। उधर गणेश दामोदर सावरकर देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखने के आरोप में सन 1909 में ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। चूंकि वो अभिनव भारत सोसाइटी से संबंधित थे, इसीलिए नासिक षड्यंत्र केस से जोड़कर उन्हें देखा जा रहा था। जांच में ये तथ्य सामने आया कि अनंत लक्ष्मण कान्हारे ने जिस पिस्तौल से जैक्सन की हत्या की थी वो ब्राइनिंग पिस्तौल थी, जो लंदन से भारत भेजी गई थी। एक नहीं बल्कि 20 पिस्तौलें आई थीं। इस तरह विनायक दामोदर सावरकर का नाम सीधे तौर पर उस कांड से जोड़कर देखा जाने लगा और वो लंदन में गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन से वो भारत लाए गए और मुकदमा चला। अनंत लक्ष्मण कान्हारे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे का हत्याकांड में सीधा हाथ होने के कारण उन्हें मृत्युदंड दिया गया, जबकि हथियार उपलब्ध कराने के जुर्म में वीर सावरकर को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान की सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया। 8 अप्रैल सन 1911 को कालापानी की सजा सुनाई गई और वीर सावरकर को जेल की तीसरी मंजिल की छोटी सी कोठरी में रखा गया था। कोठरी के कोने में पानी का घड़ा और लोहे का गिलास था। पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां थीं। जेल में क्रांतिकारियों से कड़ा परिश्रम करवाया जाता था। नारियल छीलकर उसका तेल निकालना होता था। कोल्हों में बैल की जगह क्रांतिकारियों को जोता जाता था। साथ ही जेल के बाहर लगे हुए जंगलों को साफ कर दलदली भूमि और पहाड़ी क्षेत्र को समतल भी करना होता था। रुकने पर बैंत और कोड़ों से पिटाई की जाती थी। ऐसे कठिन हालात में अंडमान की सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर दिन काट रहे थे। गणेश दामोदर सावरकर पर भी देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था। आजीवन कारावास की सजा देकर इसी जेल में उन्हें भेज दिया गया था, किंतु दोनों भाई इस बात से अनभिज्ञ थे। गणेश दामोदर सावरकर सन 1921 में वहां से भारत लाए गए। वो एक वर्ष साबरमती जेल में बंद रहे और सन 1922 में रिहा हो गए। उनका स्वास्थ्य जेल यातना के कारण बहुत बिगड़ गया था, लेकिन उन्होंने क्रांति की लौ जलाए रखी। उनका लेखन और प्रकाशन का काम जारी रहा। अब वो डॉक्टर हेडगेवार के संपर्क में आ गए, जिन्होंने देश को एक राष्ट्र एक सूत्र में पिरोने की महत्वपूर्ण पहल की। सन 1925 में गणेश दामोदर सावरकर के लेख राष्ट्र मीमांसा ने इसे और बल दे दिया। निरंतर राष्ट्र सेवा में रहते हुए गणेश दामोदर सावरकर ने 16 मार्च सन 1945 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान राष्ट्रभक्त को।

सरकार आपको बार बार बता चुकी है कि कोविड 19 पीरियड में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप जागरूक बनिए, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। कोरोना जितनी घातक बीमारी है, उतना ही सरल इसका बचाव भी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जनहित में प्रसारित। अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिव शेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और श्रोताओं, अब वक्त है आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के विजेताओं के नाम जानने का। हमारा प्रश्न था कि मल्हार राव होलकर ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था। सही जवाब है इंदौर। और श्रोताओं, वैसे तो हमें कई श्रोताओं ने सही जवाब भेजे हैं, लेकिन लकी ड्रॉ द्वारा चुने गए हमारे चार भाग्यशाली विजेता हैं शीतल कुमार सार दिल्ली से, रोशनी मंडलोई भोपाल से, सुनील ठक्कर खंडवा से और देवीदास देशमुख छिंदवाड़ा से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम आप सभी विजेताओं को भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छायाचित्र। और श्रोताओं, अब बारी है आज के सवाल की। आजादी के अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हमारा आज का सवाल है कि गणेश दामोदर सावरकर का जन्म किस तारीख को हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, गणेश दामोदर सावरकर का जन्म किस तारीख को हुआ था। आपके जवाब हमारे पास 10 दिनों के भीतर पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप SMS के जरिए भी हमें जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 777-908-908। नंबर एक बार फिर सुन ले, 777-908-908। सही जवाब के साथ अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस जरूर भेजें।

इतिहास के सफ़ों पे दर्ज हैं कहानियाँ कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो 91.8 FM, ऑलवेज हैड टची।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि किसी गरीब इंसान की अचानक लॉटरी लग जाए और उसे रहने के लिए एक बहुत ऊंचा और भव्य महल मिल जाए। अब वह इंसान उस महल की ऊंची छत पर जाकर खुशी से नाचने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे और शान से सबको दिखाने लगे कि देखो मैं कितने ऊंचे स्थान पर पहुंच गया हूं। लेकिन वह यह भूल जाएगा कि वह महल उसे केवल कुछ समय के लिए ही मिला है और अगर उसने समय रहते कोई स्थायी प्रबंध नहीं किया तो यह सुख उसे कभी भी छीना जा सकता है। वह अपनी इस नासमझी में केवल अहंकार की दौड़ लगाता रहे या आलस्य की नींद सोता रहे तो आप उसे क्या कहेंगे? आज हम सब इंसानों की हालत भी कुछ ऐसी ही है। कबीर साहब आज हमें इसी अस्थाई सफलता के नशे से जगाने आए हैं ताकि हम विधाता के दिए सबसे बड़े अवसर को व्यर्थ ना कर दें। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह आंखें खोल देने वाला सूत्र। डागल उपरी दौड़ना सुख नींदड़ी न सोई, डागल उपरी दौड़ना सुख नींदड़ी न सोई, पुने पाए दौंदड़े ओछी ठौर न खोई। डागल उपरी दौड़ना सुख नींदड़ी न सोई,

0: साधो ओछी ठोर न खोई। श्रोताओं, कबीर साहब मनुष्य को सचेत करते हुए कहते हैं, डागल ऊपरी दौड़ना। यह जो तुम्हें संसार में धन पद या मान प्रतिष्ठा का डागल यानी ऊंचा महल या चबूतरा मिल गया है, उस पर चढ़कर अहंकार की दौड़ मत लगाओ। अपनी इस झूठी श्रेष्ठता पर मत इतराओ। सुख निंदड़ी न सोई और इस अस्थाई वैभव को पाकर सुख की नींद यानी निश्चिंतता और अज्ञान की बेहोशी में मत सो जाओ। यह मत समझ बैठो कि तुम हमेशा सुरक्षित हो। वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगली पंक्ति में कबीर इसके पीछे का गहरा कारण बताते हैं। पुने पाई द्योंदड़े, यह जो तुम्हें मानव जीवन के सुंदर और मूल्यवान द्योंदड़े यानी दिन मिले हैं, यह जो ऊंचा पद मिला है, यह तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य यानी पुण्यों की पूंजी के कारण ही संभव हुआ है। ओछी ठोर न खोई, इसलिए कबीर साहब चेतावनी देते हैं कि पुण्यों से मिली इस अनमोल आत्मिक पूंजी को, इस दुर्लभ जीवन को संसार के वासना, ईर्ष्या और सांसारिक प्रपंचों जैसे ओछी ठोर यानी तुच्छ और संकीर्ण स्थानों के चक्कर में पड़कर व्यर्थ मत गवा देना। यह दोहा प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बीच के संतुलन का महासूत्र है। भारतीय दर्शन के अनुसार यह सुंदर मानव देह और अनुकूल परिस्थितियां पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का फल होती हैं। लेकिन मनुष्य की भूल यह है कि वह इस फल को ही अपनी अंतिम मंजिल मानकर भोग विलास और अहंकार में डूब जाता है। कबीर समझा रहे हैं कि ऊंचा स्थान तुम्हें इसलिए नहीं मिला कि तुम यहाँ आकर सो जाओ, बल्कि इसलिए मिला है ताकि तुम इस ऊंचाई का उपयोग अपनी चेतना को अनंत परमात्मा से जोड़ने में कर सको। जो इंसान इस अवसर को केवल सांसारिक दिखावे में नष्ट कर देता है, वह अपनी संचित पूंजी का दिवाला निकाल देता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा शांत मन से अपनी उपलब्धियों को देखिए। समाज में जो हमारा पद है, जो हमारा मान सम्मान है, क्या हम उसी के नशे में चूर होकर अपनी आत्मा को तो नहीं भूल रहे हैं? कहीं हम भी इस डागल यानी ऊंचे चबूतरे पर चढ़कर दूसरों को छोटा दिखाने की दौड़ तो नहीं लगा रहे हैं? आज कोशिश कीजिए इस अज्ञान की नींद से जागने की। अपनी हर सफलता को परमात्मा का प्रसाद मानकर विनम्र बनिए। इन अनमोल दिनों को व्यर्थ की चिंताओं और ओछे प्रपंचों में बर्बाद करने के बजाय राम नाम के सुमिरन और करुणा के मार्ग पर लगाइए। अपनी चेतना को इस ऊंचाई से और ऊपर उठने दीजिए, ताकि यह जीवन सचमुच सार्थक हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: रेडियो मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
2: गीताई अध्याय 9 मानव सेवीची राजविद्या समर्पण योग अथवा राजविद्या राजगुह्य योग। श्री भगवान म्हणाले, आता गुपित हे थोर सांगतो निर्मला तुझ रविज्ञाने कसिले ज्ञान अशुभा तू निसोडवी राजविद्या महागुह्य उत्तमोत्तम पावन प्रत्यक्ष हे सुखे लाभे धर्मसार सनातन लोकनास्तिक हा धर्म अश्रद्धेने न सेविती मृत्यूची धरती वाट संसारी मज सोडुनी मीची अव्यक्त रूप

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं वीर क्रांतिकारी गणेश दामोदर सावरकर जी को। कार्यक्रम के अंत में आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छायाचित्र। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप SMS के जरिए भी हमें जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन ले, 7771908908। सही जवाब के साथ अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस जरूर भेजें।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

अंगारों पर चलना होगा युग में परिवर्तन लाने को, झंझावातों के आघातों में स्वच्छंद गीत गाने को। पराधीनता के उस दौर में अंगारों पर चलने वाले तमाम कठिनाइयों और खतरों के बावजूद बुलंद स्वर में स्वतंत्रता के गीत गाने वाले अनेक क्रांतिकारी हुए हैं, जिनके त्याग और बलिदान की बदौलत भारत भूमि स्वाधीन हुई। ऐसे ही महान राष्ट्रभक्त थे गणेश दामोदर सावरकर, जिन्हें हम बाबा राव सावरकर के नाम से भी जानते हैं। उनकी एक पहचान ये भी है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर उनके छोटे भाई थे और दोनों ही भाइयों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई थी। गणेश दामोदर सावरकर का जन्म 13 जून सन 1879 को नासिक के निकट भागुर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। चार भाई बहनों में गणेश सबसे बड़े थे। उनके दो छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर थे और एक छोटी बहन थी मैनाबाई। बाबा राव का बचपन भागुर गांव में ही बीता। शुरुआती शिक्षा के दौर में बाबा राव का मन औपचारिक पढ़ाई से अलग हटकर धर्म योग और जप तप में लगने लगा। वो लगातार इन विषयों को पढ़ने लगे और इन विषयों के जानकार जब पधारते तो उनसे मिलकर ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। उधर पिता दामोदर पंत सावरकर की देखरेख में बाबा राव ने तलवार और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण भी मिल गया। पिता के सानिध्य में ही उन्होंने तप और अध्ययन का गुण पाया था और उनका मन घर छोड़कर संन्यास लेने का बनने लगा था। इसी बीच प्लेग फैलने के कारण उनके पिता का निधन हो गया। इसके 7 वर्ष पूर्व माँ का भी महामारी में देहांत हो चुका था। घर की परिस्थितियों और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण बाबा राव ने मैट्रिक तक की पढ़ाई ही की, लेकिन योग और चिकित्सा विज्ञान में गहरी रुचि होने की वजह से बाबा साहब ने स्वाध्याय किया तथा आगे चलकर उन्होंने स्वयं कई तरह की दवाइयां भी बनाई। इसके अलावा उन्होंने ज्योतिष शास्त्र तथा वेदांत का भी गहरा अध्ययन किया। संगीत में भी उनकी विशेष रुचि थी। वो न केवल अच्छा गाते थे बल्कि तबला और सितार बजाने में भी सिद्धस्थ थे। सन 1896 में गणेश दामोदर सावरकर का विवाह संपन्न हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी का नाम यशोदा रखा। उनकी 2 संतानें हुई लेकिन वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकी। देश के हालात उन्हें परेशान करते थे और वो आजादी के लिए क्रांति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते थे। उसी समय सन 1899 में तात्या राव और उनके दोस्तों ने राष्ट्रभक्त समूह नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। जब गणेश दामोदर सावरकर को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने उस संगठन के लिए काम करना आरंभ कर दिया। इस तरह अटल संकल्प के साथ उनका क्रांतिकारी जीवन आरंभ हो गया।

क्रांतिकारी दल किसी भी नए सदस्य की भर्ती से पहले उसकी मानसिक तत्परता और सर्वस्व बलिदान की इच्छा शक्ति को परखते थे, जिसमें गणेश दामोदर सावरकर खरे उतरे। 1 जनवरी सन 1900 को गणेश और विनायक दामोदर सावरकर ने एक संगठन खुले तौर पर शुरू किया, जिसका नाम था मित्र मेला। यही संगठन आगे चलकर अभिनव भारत सोसाइटी बना, जिसका संबंध नासिक षड्यंत्र केस से था। इस संगठन के कार्यवाहक गणेश दामोदर सावरकर ही थे। गणेश दामोदर सावरकर ने गणेश उत्सव, शिवाजी जयंती जैसे अनेक अवसरों पर सार्वजनिक भाषणों और काव्य गोष्ठियों के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया। साथ ही युवाओं के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सहित कई विभूतियों को नासिक में आमंत्रित किया। इसके साथ ही गणेश दामोदर सावरकर ने संगठन के लिए पैसा जुटाने का काम अपने हाथ में ले लिया था, ताकि उससे बंदूकें, पर्चे आदि खरीदे जा सके और देश की आजादी की अलग जगी रहे। इसी बीच उनके छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर, जो कि वीर सावरकर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, वकालत की डिग्री हासिल करने के लिए लंदन चले गए। लंदन में वकालत के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उन्हें छात्रवृत्ति दी, जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जो इंग्लैंड जाकर पढ़ने वाले छात्रों के परस्पर मिलन एवं विविध विचार विमर्श का एक प्रमुख केंद्र था। लंदन में श्यामजी से मिलकर वीर सावरकर ने इस क्रांति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार कर विदेशों से भी मदद ली। छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर कविताएं, भाषण और लेख आदि लिखकर समुद्र के रास्ते भारत भेजा करते थे और गणेश दामोदर सावरकर इन्हें संपादित करके प्रकाशित करवाते थे। ये काम तलवार की धार पर चलने जैसा था, लेकिन गणेश सावरकर इस कार्य में निरंतर संलग्न रहे। गणेश दामोदर सावरकर स्वयं भी एक उम्दा लेखक थे। उनके लेखन में देश प्रेम और शोध साफ देखा जा सकता था। बहुत शोध के बाद उन्होंने अंग्रेजी में एक किताब लिखी, इंडिया एज अ नेशन। ये किताब जब्त ना हो जाए और आंदोलन ठप ना हो जाए, इस विचार से उन्होंने दुर्गानंद के छदम नाम से ये किताब लिखी थी। हालांकि इस बात की भनक अंग्रेजी हुकूमत को बहुत जल्द लग गई, किताब बैन कर दी गई, रातों रात सारी प्रतियां दुकानों से उठा ली गईं और गणेश दामोदर सावरकर की खोजबीन का काम शुरू हो गया। उधर लंदन में रहते हुए वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति पर अपनी किताब 1857 का स्वतंत्र समर लिख चुके थे। इस तरह दोनों भाइयों पर अंग्रेजों की कड़ी नजर थी, लेकिन आजादी के इन दीवानों की नजर तो भारत देश की दुर्दशा पर थी, इसीलिए वो क्रांति पथ पर निर्भय आगे बढ़ते रहे।

सन 1909 में नासिक के कलेक्टर एएमटी जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कान्हारे नामक क्रांतिकारी ने मौत के घाट उतार दिया। नासिक षड्यंत्र कांड ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। देश भर में इस कांड की चर्चा हुई। पुलिस ने छानबीन शुरू की। मालूम हुआ कि अनंत लक्ष्मण कान्हारे का अभिनव भारत सोसाइटी से संबंध है। क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हुई। अनंत लक्ष्मण कान्हारे के साथ कृष्णजी गोपाल कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे सहित 34 से अधिक लोग पकड़े गए। उधर गणेश दामोदर सावरकर देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखने के आरोप में सन 1909 में ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। चूंकि वो अभिनव भारत सोसाइटी से संबंधित थे, इसीलिए नासिक षड्यंत्र केस से जोड़कर उन्हें देखा जा रहा था। जांच में ये तथ्य सामने आया कि अनंत लक्ष्मण कान्हारे ने जिस पिस्तौल से जैक्सन की हत्या की थी, वो ब्राइनिंग पिस्तौल थी, जो लंदन से भारत भेजी गई थी। एक नहीं बल्कि 20 पिस्तौलें आई थीं। इस तरह विनायक दामोदर सावरकर का नाम सीधे तौर पर उस कांड से जोड़कर देखा जाने लगा और वो लंदन में गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन से वो भारत लाए गए और मुकदमा चला। अनंत लक्ष्मण कान्हारे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे का हत्याकांड में सीधा हाथ होने के कारण उन्हें मृत्युदंड दिया गया, जबकि हथियार उपलब्ध कराने के जुर्म में वीर सावरकर को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान के सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया। 8 अप्रैल सन 1911 को कालापानी की सजा सुनाई गई और वीर सावरकर को जेल की तीसरी मंजिल की छोटी सी कोठरी में रखा गया था। कोठरी के कोने में पानी का घड़ा और लोहे का गिलास था। पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां थीं। जेल में क्रांतिकारियों से कड़ा परिश्रम करवाया जाता था। नारियल छीलकर उसका तेल निकालना होता था। कोल्हों में बैल की जगह क्रांतिकारियों को जोता जाता था। साथ ही जेल के बाहर लगे हुए जंगलों को साफ कर दलदली भूमि और पहाड़ी क्षेत्र को समतल भी करना होता था। रुकने पर बैंत और कोड़ों से पिटाई की जाती थी। ऐसे कठिन हालात में अंडमान की सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर दिन काट रहे थे। गणेश दामोदर सावरकर पर भी देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था। आजीवन कारावास की सजा देकर इसी जेल में उन्हें भेज दिया गया था, किंतु दोनों भाई इस बात से अनभिज्ञ थे। गणेश दामोदर सावरकर सन 1921 में वहां से भारत लाए गए। वो एक वर्ष साबरमती जेल में बंद रहे और सन 1922 में रिहा हो गए। उनका स्वास्थ्य जेल यातना के कारण बहुत बिगड़ गया था, लेकिन उन्होंने क्रांति की लौ जलाए रखी। उनका लेखन और प्रकाशन का काम जारी रहा। अब वो डॉक्टर हेडगेवार के संपर्क में आ गए, जिन्होंने देश को एक राष्ट्र एक सूत्र में पिरोने की महत्वपूर्ण पहल की। सन 1925 में गणेश दामोदर सावरकर के लेख राष्ट्र मीमांसा ने इसे और बल दे दिया। निरंतर राष्ट्र सेवा में रहते हुए गणेश दामोदर सावरकर ने 16 मार्च सन 1945 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान राष्ट्रभक्त को।

सरकार आपको बार बार बता चुकी है कि कोविड 19 पीरियड में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप जागरूक बनिए, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। कोरोना जितनी घातक बीमारी है, उतना ही सरल इसका बचाव भी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जनहित में प्रसारित। अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिव शेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और श्रोताओं, अब वक्त है आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के विजेताओं के नाम जानने का। हमारा प्रश्न था कि मल्हार राव होलकर ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था। सही जवाब है इंदौर। और श्रोताओं, वैसे तो हमें कई श्रोताओं ने सही जवाब भेजे हैं, लेकिन लकी ड्रॉ द्वारा चुने गए हमारे चार भाग्यशाली विजेता हैं शीतल कुमार सार दिल्ली से, रोशनी मंडलोई भोपाल से, सुनील ठक्कर खंडवा से और देवीदास देशमुख छिंदवाड़ा से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम आप सभी विजेताओं को भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छायाचित्र। और श्रोताओं, अब बारी है आज के सवाल की। आजादी के अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हमारा आज का सवाल है कि गणेश दामोदर सावरकर का जन्म किस तारीख को हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, गणेश दामोदर सावरकर का जन्म किस तारीख को हुआ था। आपके जवाब हमारे पास 10 दिनों के भीतर पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप SMS के जरिए भी हमें जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 7771908908। सही जवाब के साथ अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस जरूर भेजें।